0: राधे भगवान सिद्धिप नरे महाप्रभु जी की जय। श्री सिद्धपुरी जी महादेवा की जय। श्री स्वामी माधवानंद जी सतगुरु देवा की जय। श्री विश्व गुरु परमहंस स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेवा की जय।
1: You do it, Puspa. One version. If I like it more, then I will have one more.
2: Satguru Dev ki jai.

0: महादेव की जय। देवा दि देव देवेश्वर महादेव की जय। श्री दीनानंद भगवान की जय।
1: हिंदू धर्म शर्मा श्री माधवानंद पुरी जी महाराज की जय। विश्व गुरु महामंडलेश्वर परमानंद स्वामी श्री महेश्वरानंद जी पुरी जी
0: गुरुदेव की जय।

पूज्यपाद अनंत श्री विभूषित परिब्रज का चार ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्री श्री श्री 1000

0: की जय। आराध्य भगवान श्री दीप नारायण महाप्रभु जी की जय। श्री होली गुरु जी भगवान की जय। श्री विश्व गुरु जी परमहंस स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेव की जय।
1: सत्य सनातन धर्म की जय।
2: वन मोर भजन, डजंट मैटर विच वन।

सर्वप्रथम सद्गुरुदेव को प्रणाम करता हूँ। आप सभी साधकों बुद्धिजीवियों को प्रणाम करता हूँ। माइसेल्फ डीसी सुरंगानंद तिवेराज, गिटारिस्ट ऑफ अनूप जलोटा एंड रेडियो टीवी। थैंक्स। आई एम फ्रॉम अजमेर, राजस्थान। नाउ आई एम प्रेजेंटिंग यू गुरु वंदना।

0: हरि ओम हरि हरि ओम। धन्यवाद।
1: थैंक्स। प्रणाम। धन्यवाद। समय हो तो मीरा का या कबीरदास जी का या अनूप जलोटा जी का 15 मिनट देंगे, 10 मिनट। ओके। माय गुरु अनूप जलोटास इट भजन ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन।

गाने लगी महलों में पली बन के जोगन चली, महलों में पली बन के जोगन चली। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन।

बोलिए सदगुरुदेव की जय, बोलिए मीरा के श्याम की जय। आखिरी एक भजन कबीरदास जी का, चदरिया झीनी रे झीनी या तो राम रंग रस बीनी।

ओढ़ी शंका मत करिए, ये दो दिन तो कुदी चादर ओढ़ शंका मत करिए, ये दो दिन तो कुदी।

प्रीत न कर जो को। मीरा कहती है, नहीं भावे थारो देसड़ लो रंग रूड़ो, अरे थारा देसा में राणा साधु नहीं छे, लोग बसे सब कूड़ो। नहीं भावे थारो देसड़ लो रंग रूड़ो, नहीं भावे थारो

ओम शांति शांति शांति शांति सद्गुरुदेवाय नमः। सद्गुरुदेवाय नमः। सद्गुरुदेवाय नमः। किसी भी त्रुटि के लिए क्षमा चाहता हूँ। आपका धन्यवाद। एक बार इफ यू वांट। थैंक यू।

गुरु महेश्वरानंद जी की शरण में, सुरंगानंद दिव्यराज नाथ शिवानंद अजमेर, शिवम शारदे कला केंद्र।

और सुनो, इनफ। धन्यवाद। ए लिटिल कंपोजिशन रिटन एंड कंपोज्ड बाय मी, प्लीज हियर एंड एंटरटेन, एंड प्लीज पीस टू गॉड एंड प्रेयर टू आवर गुरुदेव। इन द वर्ड्स नथिंग, झूठी माया, झूठी काया, झूठा ये संसार है, झूठे जगत का झूठा तमाशा, झूठा कारोबार है।

0: जय। ओम दीपेश्वर महादेव की जय। ओम सदगुरुदेव की जय। ओम शांति शांति शांति। जी गुरुदेव। मिला
1: एक महीने पहले आए थे,
0: पूरा परिवार आया था आपके शरण में, बड़ी खुशी है। हाँ मैं तो चलेगा, लेकिन आप, मैं नाचीज कुछ नहीं आता। हरिओम।

सतगुरु साहिब देवपुरी साह सतगुरु साहिब देवपुरी सा सब संतन सिर ताजे सब संतन

संदेशा मैं हूँ जैसो को तेसरे सदगुरु दियो संदेशो नहीं जीव ईश ब्रह्माया में केवल एक अजाया रे ये महान सत उपदेशा नहीं है ओम सो

है ऐसो ये गूंज भेद कहे गाथा श्री स्वामी दीप फरमाया रे बड़े भागी जन सुने रो मोरा सदगुरु दियो संदेशो रे मैं हूँ जैसो को तैसो नहीं जीव ईश ब्रह्म माया में केवल एक अजाया रे ये महान सत उपदेशो नहीं है ओम सो।

0: की
1: जय। जय पुरुषमहादेव
0: की
1: जय। श्री शरण भगवान की जय। हिंदू धर्म सम्राट परमहंस स्वामी श्री माधवानंद भगवान की जय। विश्व गुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी की जय। धर्म की जय। माता
0: पिता गुरुदेव की जय। शांति शांति।
2: आप तो काफी काम कर रहे ना।
0: जी जी
2: भी आपका, लेकिन फिर भी आपका बहुत।
0: अरे अरे, अभी पहला मौका है, पूरी पार्टी लाऊंगा साजो सामान सहित जब आदेश करेंगे आप।

शांति शांति शांति सद्गुरुदेवाय नमः मातृपिता गुरुदेवाय नमः भारत भूमि नमः ओम सनातन

भूचरा हर की आत्मा। श्री दीप नारायण भगवान शिवानंद जी महाराज की, अलकपुरी जी महादेव, देवादिदेव देवेश्वर महादेव की।

श्री दीप नारायण भगवान की जय। श्री श्री देव पुरुषा महादेव की जय। सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। ब्लेसेड सेल्फ, डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हियर इन दिस हॉल इन आवर ब्यूटिफुल आश्रम एंड ऑल

शांति शांति। देवपुरी महादेव की, दीप नारायण भगवान की जय, माधव कृष्ण भगवान की जय। हरिओम।

enzyme. That's a 5 saligrams. So everyone can keep in saligram and tulasi. It has got medicinal benefits, herbs, and also whenever you sick, whenever you are a problem, that you go to hospital. In hospital, what they do first, then they supply first is oxygen mask. So nature give you oxygen masks in your home. When you plant tulasi in front of your door, if in your flower plant, that is continuously for free, without ambulance, without doctors, without anything, she's going to give you free. That tulasi is oxygen. And that herbs is useful for your anything, for fever, for tonsillitis, for back pain, for any difficulties, even cancer. It shows like antibiotic there, antifungi, or antibacterial tulasi. If you put in tea, there is tulsi tea as well. If you wear tulasi mala, that also helps your blood pressure. If you put always 2 pieces of tulasi, that removes the bacteria and helps you. This tulasi is the amazing herbs. When you know this one, so no matter in this world, tulasi doesn't choose any caste, culture, group, nationality, or gender. It is for everyone, everywhere. It is helpful. So you can utilize this is and tulasi's mahima. And Jai Bali Siyavara Ramachandra ki, Jai Vishnu Bhagavan ki, Jai. जब शंखचूड़ को जब जब से शंखचूड़ का बल बहुत बल बड़ा था क्योंकि पत्नी व्रत धर्म से तब क्या हो गया कि विष्णु भगवान छल करने के लिए गए. जब विष्णु भगवान ने जो कृष्ण कवच छीन लिया वृद्ध ब्राह्मण बन के उसके बाद में अपति बनकर घर में चले गए और दानव शंखचूड़ के भेष धारण करके तुलसी के घर में चले गए. तुलसी के घर में चल के तो तुलसी आ गई कि उनके स्वागत करने के लिए. विष्णु भगवान के उसने तो नहीं देखा, उसने तो सोचा कि हमारे पति आ गए, पति आ गए. तो भूले वाली तुलसी ने क्या किया, पति आ गए समझ के उसको सलाम कर लिया, पाँव धो लिया, घर में लेकर गया, खाना दे दिया. रात में फिर रतिक्रीड़ा किया और रतिक्रिया करने के बाद में जो पति व्रता धर्म है पत्नी का नष्ट हो गया. इसलिए कोई भी विवाहित नारी तो अपने पति छोड़ के किसी के साथ में रहती है तो उसका पति व्रता धर्म नष्ट हो जाता है. ऐसे करके अगर पति भी कहीं किसी को संबंध रखता है अपने पत्नी होकर भी तो उसका भी पत्नी व्रत धर्म नष्ट हो जाता है. तो इस दुनिया में पति व्रत धर्म और पत्नी धर्म सबसे शक्तिशाली है. जो विष्णु भगवान और लक्ष्मी और जो पार्वती और शिव और ये आप देख सकते हैं शंखचूड़ और तुलसी में भी, जब इनका पत्नी व्रत धर्म जो पति व्रत धर्म नष्ट हो गया तो शंखचूड़ दानव भी कमजोर होने लगा. जय बोलिए भगवान नारायण की जय. तो इसका अर्थ क्या है कि जब आपको घर में पति पत्नी के बीच मेल है तो दुनिया कोई नहीं बिगाड़ सकता है आपको, ना तो पड़ोसी बिगाड़ सकता है, ना तो भाई, नहीं तो कोई. जब पति पत्नी में कलह पैदा हो गया तो शक्ति छीन लेता है तो घर फिर टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है और जितने भी आप देखावटी के लिए पति पत्नी हो जाते हैं और पति के दुश्मन पत्नी ही हो जाती है. तो इसलिए बोलते हैं कि एक आदमी ने पूछा कि पत्नी और दुश्मन में क्या फर्क है, तो वो आदमी ने बताया कि दुश्मन दूर में रहता है और पत्नी साथ में सोती है, लेकिन दोनों दुश्मन है. तो मतलब जिसको साथ में प्यार नहीं है, अच्छा नहीं है, तो ये शत्रु के रहता होता है. इसीलिए क्या है कि जब मिलन होता है वो शक्ति बन जाता है. तो विष्णु ने भी वो शक्ति छीन लिया तुलसी को. तुलसी बहुत गुस्सा में आ गई जब पता चला कि ये विष्णु तो छल करके मेरा धर्म को लूटने के लिए आया, तो आप ऐसा पाप करने के लिए आया तो मैं श्राप देता हूं. तो उसने श्राप देने से पहले विष्णु ने बोला कि तुलसी इससे उपाय कुछ भी नहीं था क्योंकि आपके पति दानव ने सारे संसार में क्या किया कि परास्त कर दिया, देवता के लिए कुछ जगह ही नहीं है. इसलिए क्या है कि मैंने ऐसा करना पड़ा, माफ दीजिए. तो तुलसी ने क्या किया, श्राप कर दिया, श्राप दे दिया. श्राप देने के बाद में क्या श्राप दिया, पाषाण होके रहना पड़े. दैट मीन्स तो यू नीड टू बी ए स्टोन, तो आप पत्थर होकर रहना पड़े. तो पत्थर होकर रहे तो उसी के श्राप से विष्णु भगवान शालिग्राम होकर रहे. इसलिए शालिग्राम को हम क्या है कि विष्णु भगवान के प्रतीक माना जाता है. तो उसी समय में जब श्राप देते समय में शिव जी आ गए और भोले भाले शिव जी ने क्या है तुलसी को समझाया, तुलसी ये आपका कुछ भी दोष नहीं था, लेकिन क्या है कि धर्म रक्षा के लिए विष्णु ने भी ये किया है. इसलिए आप अब क्या करो कि कहीं कोई परपुरुष से जाने से शरीर क्या है कि अपवित्र होता है लेकिन मन नहीं हो सकता है. आपको मन नहीं था, आपको मन से नहीं किया है, इसलिए क्षम्य है. इसलिए कभी कभी क्या होता है तो गुंडे लोग आके रेप कर देते हैं, उसका मन नहीं रहता है, लेकिन शरीर तो अपवित्र हो गया लेकिन मन नहीं रहता है. तो मन को हम माना जाता है, स्वीकार कर लेते हैं. तो फिर
भगवान भोले ने भी वही किया कि आपका शरीर त्याग कर दो, उसने शरीर त्याग कर दिया। वही त्यागा हुआ शरीर गंडकी बनकर बग रही है। अभी सत्य युग से अभी तक गंडकी वही तुलसी का शरीर था, और गंडकी में ही शालिग्राम मिलता है। गंडकी नेपाल में पड़ता है, नेपाल के पोखरा के नजदीक मुक्ति क्षेत्र धाम है, वही धाम से गंडकी नदी बहती है। वो गंडकी के शिविर में शालिग्राम मिल जाता है, और शालिग्राम के अंदर में आप तोड़ के देखो तो वहां पे चक्र, सुदर्शन चक्र दिखाई देता है विष्णु का। इसलिए ये कोई बनी बनाओ बात नहीं है, आप खुद जाके अभी देख सकते हैं। कलिकाल में कलिकाल का देवता साक्षात आप देख सकते हैं शालिग्राम को, और शालिग्राम के अंदर चक्र देख सकते हैं। अगर कोई भी शालिग्राम आने वाला नदी गंडकी में जाके, नेपाल के गंडकी में जाके स्नान करेगा तो वो पुराण में लिखा है आपको 100 योनि तक आपको धर्मात्मा बनकर रहने का आशीर्वाद मिलेगा, और को पाप सारा छूट जाएगा। तो इसीलिए उस समय से तुलसी और भगवान विष्णु साथ में रहने लगे, और शिवजी ने बोला था कि तुलसी आप अब संदेह नहीं करो, भगवान विष्णु को स्वीकार करो, आप भी वैकुंठ चलो। और तुलसी ने बोला कि मेरा सारे समय में मेरा पूजा होना चाहिए। चलो ठीक है, वही आशीर्वाद मिला। तो आज तक भी हम तुलसी को पूजा करते हैं, विष्णु भगवान के साथ में रखते हैं, और तुलसी आपको खान पान में रखे तो क्या हो जाता है, वो आपको दवाई हो जाता है। आयुर्वेद का औषधि है, दवाई है तुलसी, आपको कैंसर से लेकर सारा रोग को निवारण करता है तुलसी। घर घर में रखे तुलसी ऑक्सीजन देता है, तुलसी आयुर्वर्धक है, तुलसी क्या है कि आरोग्य देता है। इसीलिए तुलसी चाहे मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, जैन हो, सिख हो, सबके लिए समान अवसर समान लाभ देता है। तो सबके घर में तुलसी होना चाहिए। तुलसी पूजा करे नहीं करे फिर भी लाभ देती है, पूजा करे तो विष्णु भगवान खुश हो जाते हैं, आपको पाप भी नष्ट हो जाता है, आपको आरोग्य प्राप्त हो जाता है। तो उस दिन से तुलसी और शिव जी साथ में रहने लगे। जय बोलिए विष्णु भगवान की जय, तुलसी माता की जय। सो वी गोइंग टू चैंट नारायण, कृष्ण भगवान के क्या है, कृष्ण भगवान के आशीर्वाद से, कृष्ण कवच से, वजह से ये युद्ध में शंखचूर दानव नहीं हारा था। अब क्या है, शंखचूर दानव हर गया और कृष्ण कवच विष्णु के पास में रह गया। कृष्ण इतने शक्तिशाली पहले भी थे, अभी भी है, और कवच शक्तिशाली है। तो कृष्ण भगवान को जय बोलो, जय बोले कृष्ण भगवान की जय श्री।

फिर उसके बाद में जब वृंदा को श्राप से क्या हो गया कि स्वस्थानी पुराण में वृंदा ने 4 श्राप दे दिया। शिव पुराण में जो जो बात है वही है, लेकिन स्वस्थानी पुराण में जब वृंदा का जो पतिव्रता धर्म विष्णु ने नष्ट कर दिया, उसके बाद में वृंदा ने 4 श्राप दे दिया। पहला श्राप था कि विष्णु छलकारी तो जाके पत्थर बन के रहना, तो पत्थर बन के रहना पड़े तो उस टाइम से पत्थर शालिग्राम के रूप में रहे। फिर दूसरा श्राप था तेरे को पेड़ बन के रहना पड़े, तो पेड़ बन के रहना पड़े का मतलब कि पीपल बन गए विष्णु जी। और दूसरा तीसरा श्राप था कि आप ग्रास बन के बनना पड़े, तो इसलिए कुश ग्रास भी तुलसी कुश ग्रास भी विष्णु का रूप है, कुश ग्रास बन के बन गए। और ऐसा करके उसने श्राप दिया आप कि झाड़ होकर रहना पड़े, घास होकर रहना पड़े, तो तुलसी बन गए। इसलिए 4 श्राप था। तो वृंदा के श्राप से विष्णु भगवान श्राप मोक्ष के लिए पहले से अभी तक को मोक्षता के लिए रहे हैं। तो वृंदा कर्स तो विष्णु 4 कर्सिंग देयर। फर्स्ट थिंग इज बेटर यू रिमेन स्टोन, एंड देन सेकेंड ट्री, एंड थर्ड वन इज ग्रास। सो दैट्स व्हाई ग्रास द यू नो द ग्रास इज कुश ग्रास, द ग्रास कुश ग्रास इज ऑल्सो टेकन एज अ विष्णुज इनकार्नेशन, एंड दैट्स व्हाई इन प्रेयर एवरीवेयर वी यूज द कुश ग्रास। एज वी मेंशन अर्लियर सेशन इज कुश ग्रास इज ऑल्सो मेडिसिनली इज थेरापेटिकली वेरी यूजफुल एंड वेरी वंडरफुल हर्ब्स। एंड सिमिलरली सी कर्स द ग्रास बुश, द बुश इज तुलसी, तुलसी होकर रहना पड़े, कुश होकर रहना पड़े और पीपल रुख होना पड़े। इसलिए इस दुनिया में पीपल को, तुलसी को, शालिग्राम को, और क्या है कि हम जो पीपल को, रुख, शालिग्राम को, तुलसी को, कुश ग्रास को विष्णु के रूप पे इस्तेमाल करते हैं। ये आयुर्वेद के हिसाब से, स्वास्थ्य के हिसाब से अच्छा है, आपको बीमार ठीक कर देता है। और तुलसी खाना में डाल के खाए आपको बाथ रोग ठीक हो जाता है। तुलसी घर में रखे आपको चट्यांग नहीं आता है आकाश से, और कोई भी विस्मत नहीं आता है, और भूत प्रेत पिशाच नहीं आता है। इसलिए कुश ग्रास चाहे जिसी धर्म का इंसान हो तो वो रखे तो उसके लिए लाभ होगा, तुलसी भी ऐसे करके लाभ होगा। सो फ्रॉम दैट डे विष्णु स्टार्टेड टू मोक्ष, मोक्ष के लिए आ गए, एंड देन ही स्टार्टेड टू रिमेन तुलसी, पीपल, शालिग्राम एंड कुश ग्रास। सो नाउडेज इफ यू हैव टू प्रे विष्णु, नॉर्मली यू गो टू एंड वर्शिप, एंड इट इज सेइंग विष्णु तुलसी पीपल इज अ इंडिकेटर ऑफ विष्णु। That's why that is the only tree in this universe that gives continuously oxygen. The other tree gives carbon dioxide as well. But people, that continuously. That's why meditation can be successful. The Buddha meditated where? Under the tree of banyan tree, the people tree. So that's why under the, that is easy. Without food also you can take oxygen. And without water, without food, also you can meditate. So the meditation becomes easier under the tree of the banyan tree. And also according to the astrology, if you have the mangalik, if you have that some difficulties in your conjugal life, if you supposed to suffer some difficulties in your conjugal life, and there is a provision, you go and marry with the people. So people is Vishnu, and Vishnu will take the responsibility. And that is the because of the course of the Vrinda. That's why any difficulties you have got husband and wife, the negativity will, the burden will carry by the people tree, and you will be free. If you Google that, why people does the banyan tree wedding, that's the mystery. तो इसीलिए क्या है कि वेद पुराण में भी बताया गया है कि पीपल क्या है, सबसे बड़ा, सर्वाधिक लोकप्रिय, जनहितकारी, सर्वकालिक, सर्वदेशीय और सर्वप्रिय वृक्ष है। जो वृक्ष आपको सर्वाधिक ऑक्सीजन प्रदान करता है दुनिया में, सारे पौधे पेड़ क्या करता है कि रात में और दिन में अलग अलग ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड देता है, लेकिन पीपल का पेड़ कंटिन्यूसली आपको ऑक्सीजन हवा देता है, जो हवा मानव जीवन के लिए, जीने के लिए अत्यावश्यक जरूरी है। पीपल हैव गॉट द ग्रेट वैल्यू, सो दैट्स व्हाई इन हवन ऑल्सो व्हेन यू डू हवन देयर नीड्स टू बी पीपल्स वुड, people woods, tulsi woods, kush grass, tulsi wood. So when you death also in cemetery, if your body is cemetery cremate with the wood of the people, kush, tulsi, it says like it will be purified your body and spiritually you will go in heaven, Sivaloka, Vaikuntha. So that's why in the death time, many people in India, in other places, they collect some wood, little bit tulsi, little bit that pancha.

पल्लव इज पीपल, मरने के समय में क्या है कि थोड़ी सी भी पीपल के पेड़ लकड़ी और तुलसी की लकड़ी साथ में रख लो, और चिता में कोई भी किसी का भी चिता पीपल का लकड़ी से तुलसी का लकड़ी से उसमें कुशकाश रख के उसको चिता जो चिता दहन होता है तो वो वैकुंठ लोक जाता है। तो वो तो स्पिरिचुअली है, इफ यू डोंट बिलीव, अगर आपको विश्वास नहीं है तो क्या है कि जहाँ पे पीपल को जो बॉन होने से जो हवा आता है तुलसी से और कुश से, उससे वायुमंडल को साफ रख देता है, वो गंध को दूर कर देता है, इसलिए वायुमंडल का कीटाणु नुकसान कर देता है और ओजन लेयर को भी टाल देता है, इसलिए पीपल के ट्री बहुत अच्छा है, हवन के लिए संविदा बना देता है। जय बोलिए पीपल भगवान की जय। सो दिस इज द वंडरफुल स्टोरी दैट यू कैन एक्सपेरिमेंट इवन you go and if you have the measurement of the oxygen that has been done many times in Australia also did, so if you take that level of oxygen near close to the peepal tree or basil tree the tulsi ke nazdik jaake check kare, so you will get the high temperature high level, so that's why always tulsi is beautiful and then people is beautiful, so it says no matter whatever story is connected but that is a wonderful gift from this universe, for the universe. So meditating under the banyan tree and bringing the kush grass in your flower pot and planting the tulsi kush grass is wonderful. That's why our saint and rishi munis, they ate that every prayer you need to have leaf of the tulsi, leaf of the peepal and kush grass. That's a compulsory. So if we don't find, that's okay. But if we have that one, that's a wonderful, perfect prayer. So in the kalasa also, that we put that, if you see that in the kalasa, there is a 7 leaf. If we don't find the 7, we'll put the 5. So in the 5 leaf, that is also panchapallav. Mango, and peepal, and aak, and chaap. So tulsi, everything goes there. So that's why the leaf is connected with Ayurveda. And therapeutically, which is wonderful. And so that's why when this value goes to the Western world and there is expensive, in you might came from the Japan and Australia and some other country, Canada, nowadays the gardener, they are growing the peepal tree, banyan tree, and which is very expensive tree. It takes 1,000 to 2,000 for one plant. So what a valuable now, isn't it? So better you can go and darshan here. You are India. While you are in India, you can see and feel that's a tree, the people tree. Jai boliye Narayan Bhagwan ki jai. Isliye people ke rukh mein dhyan karne se, people ke rukh ke niche baith ke dhyan karne se, swas prashasan mein aashwasan to yahi hai. Aur people ke kya hai? People mein Brahma, Vishnu, Mahesh ka bhi baas hai. इसलिए पीपल के वृक्ष के नीचे बुद्ध भगवान जो नेपाल में जन्म हुआ था उनका उनकी उन्होंने भी ध्यान किया, ध्यानस्थ करके उसी बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे प्रज्ञा प्राप्त किया। कब प्राप्त किया? वैशाख शुक्ल पूर्णिमा के दिन में, वैशाख शुक्ल पूर्णिमा के दिन में जन्म, वैशाख शुक्ल पूर्णिमा के दिन में महानिर्माण, और वैशाख शुक्ल पूर्णिमा के दिन में ज्ञान प्राप्ति होने वाला ऋषि मुनि वही थे कि जो नेपाल के गौतम बुद्ध जो बोध गया में आकर मेडिटेशन किया था। तो ऐसे करके रामतीर्थ स्वामी भी वही पूर्णिमा के दिन में, उनको जन्म हुआ था पूर्णिमा के दिन में ही, उनका मृत्यु हुआ था। इसलिए कि वैशाख पूर्णिमा वैसे भी अस्पिस से, उसमें भी जो पीपल के वृक्ष के नीचे आप कोई भी काम करे तो होता है। इसलिए फिर दूसरा चीज है, जब भी शनि संकटा का जो आपको समस्या है तो ज्योतिष विज्ञान भी वही आपको शिकायत करता है कि शनिवार के दिन में जाके पीपल के पेड़ में पानी गिराओ, तो पानी के कमी होने से वो आपको धर्म नहीं होता है, ऐसा नहीं है। जब आप सुबह शनिवार के दिन में पीपल के वृक्ष के नीचे जाएंगे तो आपको सारा नेगेटिविटी हो, स्ट्रेस हो, और जो प्लैनेट से आया हुआ कोई भी नेगेटिव वाइब हो दूर हो जाता है और आपको अच्छे ऑक्सीजन मिल जाता है, इसीलिए आपको ग्रह पीड़ा से आप मुक्त हो जाते हैं। जय बोलिए पीपल भगवान की। सो इट इज सेइंग दैट इन एस्ट्रोलॉजी आल्सो, इफ यू आर सफरिंग सम प्लैनेटरी दैट इल इफेक्ट, देन यू कैन गो अंडर द बनियन ट्री on Saturday and offer water. It is saying that the remedy, one of the remedy of the Saturn planets to remove to Graha Pida. So why it is fruitful? Because when you go on Saturday,

0: जय। श्री श्रीमाधव कृष्ण भगवान की जय। विश्व गुरु महामंडलेश्वर परमहंस श्री स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेव की जय।
1: जय बोले भोले बाबा की। सो इन शिव पुराण व्हाट एवर टॉक्स द सुस्तानी पुराण आल्सो द सेम थिंग एज आई मेंशन बिफोर इन इन टीचेस अस हाउ वी कैन रिमेन ऑल द टाइम इन अ डीप स्पिरिचुअल वैल्यू द लाइफ इज वेरी शॉर्ट एंड वी केम इन दिस यूनिवर्स दैट फॉर अ शॉर्ट लाइफ सो इट इज सेइंग दैट इन स्काई व्हाट एवर लाइट गिव्स बाय द स्टार that much wide place it can see. That's why in our life also, whatever divine divinity or purity we can maintain, that much purity we can carry with us. So every stories, every philosophy, every that the information teaches us these things here. So that's why whatever you meant, the change your vision, visuality, तो शिव पुराण हमारे लिए और सारे वेदादि वेद क्या करता है कि हमारे लिए जीवन कैसा सरल बनाना है और शिव जी की तरह कैसा रहना है। और शिव जी ने बोला है कि मैं कल्प कल्प में आवश्यकता के अनुसार कभी ब्रह्मा बन के, कभी विष्णु बन के और कभी शिव बन के मैं क्या है कि संसार को चलाता हूँ। तो कभी कभी मेरा भूमिका रहता है ब्रह्मा का, कभी विष्णु का, कभी क्या है तो कभी रहता है शिव का। इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश में कोई विभेद नहीं है और शिव से विष्णु बड़ा, विष्णु से ये बड़ा वो हो ही नहीं सकता, ब्रह्म एक ही है। तो इसलिए ब्रह्म एक है, तो सबसे बड़ा शैव कौन है कि नारायण है, सबसे बड़ा वैष्णव कौन है कि फिर शिव जी है, वो तो हमने बारंबार बोलते ही आया है। सारे शास्त्रों ऋषि मुनि संतगण महात्मा सारे समय समय में उपदेश देते आया है इसके लिए, फिर भी जब संदेह रहता है तो संदेह क्या है कि इस कार्य बिगाड़ देता है, संदेह ही क्या है कि धर्म का नुकसान करने वाला है। तो इसलिए संशय आत्म विनश्यति ही, तो किसने बोला है तो भागवत गीता में श्री कृष्ण भगवान ने बोला है कि तो संशय करोगे तो उसमें क्या होता है कि आत्म द्रवीड़ हो जाता है, मन बिगड़ जाता है। सो व्हाट एवर यू फॉलो ट्रस्ट, व्हेन यू ट्रस्ट देन डेफिनेटली इट विल हेल्पफुल फॉर यू। इट इज सेइंग दैट we always celebrate Hanuman Jayanti, isn't it? So Hanuman is a bhakta of Rama. We always celebrate Hanuman Jayanti. But in similarly, Arjun also the very close friends and bhakta also the Krishna. So why we cannot celebrate Arjun Jayanti? Because Hanuman is a devoted person. He never doubt. So he always respect and honor. There was no doubt for him. God exists or not. There is always he believe and trust. So that's why we celebrate the devotion of Hanuman. That's why we call Hanuman Jayanti. But do we celebrate Arjun Jayanti? No. Because Arjun also devotee. But he always doubt. Doubt after doubt.

asking, oh, what will happen? Oh, the Lord Krishna, I cannot fight. Oh, the Lord Krishna, you said meditate. But how can we meditate? And you said one time that go and marry and remain in a dharmacharya. This is a confusion. So I mean confused. So, and that's a continuously, sarva dharman parityajya mamikam saranam braja. So Bhagavad Gita chapter 18 verses 66. Sarva dharman parityajya mamikam saranam braja. Aham tvam sarva pape bhyo moksha isyami ma sujaha. So Bhagavad Gita ke 18 अध्याय के 66 श्लोक में जो लिखा है वो भी क्या है कि सर्वधर्मान मतलब कि कोई भी चीज आपका जो दानवीय चीज है कोई भी असुर तत्व है सबको छोड़ के एक निर्वित्त होकर मानवीय धर्म ब्रह्म धर्म में निर्लिप्त हो जाइए तो उसमें क्या है कि आपको बहुत से मुक्ति मिल जाएगा. इफ यू सरेंडर दैट चैप्टर 18 वर्सेस 66 भागवत गीता सेज इफ यू सरेंडर विदाउट एनी डाउट definitely you will go, you will cross the river. If you doubt, then it will not be. That's why it is saying that it increases faith also. And for the faith, there's many stories it comes, many things it comes. So that's why there is theories. One is, you remain happily without doing material gain, with balancing material gain, or it's like a Charvak Siddhanta, the Charvak theory. The Charvak theory says like, यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृवेत घृतम पिवेत वस्त्री भूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः. दैट मीन्स यावत् जीवेत सुखम जीवेत एज लॉन्ग एज यू लिव लिव हैप्पीली एंजॉय ड्रिंक ड्रांस एंड नो मैटर यू हैव डेट और नॉट थैंस एफर्ट घी घी मीन्स लाइक नेक्टर एंजॉय योर लाइफ. बट दैट चार्वाक थ्योरी इज दैट सेट बट इन स्पिरिचुअलिटी इट इज लाइक देयर इज अ ग्रेट नेक्टर. If you have the addiction of divine, you don't need to enjoy for wine. So in you can enjoy with divine. The divinity, spirituality is really good. So that's why it says like, trust and follow the Shiva Purans. It says like from Rudra Samhita to this, we can summarize, when we summarize that, the Tulasi's devotions and how can it helps this society to unite husband and wife, society and family to family. This is the one of the wonderful story. And secondly, we can learn this one, great devotion, deep devotion without any doubt. Where is doubt, cut it out and continuously you follow. And later on, finally, it is saying that the Brahma is Vishnu and Mahesh, the trigona, proton, neutron and electron. They merge together whenever it necessary. And no matter whatever powerful demon, whatever the power you have got, one day that will be cessation. So that's why that's the story from the Satya Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga to now it's a discontinue. This is the wonderful story we studied in Rudra Samhita. And almost we finished 43 chapters of this Rudra Samhita, Panchama Yuddha Khanda, which is wonderful. And I think today we need to conclude this one. So, askeli, aaj humne kya sun liya ki Rudra Samhita mein पहले से अभी तक क्या हुआ कि पार्वती जी का डिवोशन तो हमने सुन लिया था. ऐसे करके जालंधर को कैसा विष्णु भगवान ने परास्त करने के लिए वृंदा को सतीत्व हरण करना पड़ा और सतीत्व हरण करने के बाद में उनका पति धर्म नष्ट हो गया. पति धर्म नष्ट होने के वजह से क्या है कि जालंधर दानव मर गया. इसलिए पत्नी बीच के जो धर्म होता है वो बहुत शक्तिशाली रहता है. आप कहीं भी रहो जैसा भी रहो कि शंखचूड दानव के लिए भी कौन थी बलवान तुलसी का व्रत था. तो ऐसे करके फिर शिव जी के लिए पार्वती थी और विष्णु भगवान के लिए लक्ष्मी, जालंधर के लिए वृंदा. जब तक उनको पतिव्रता धर्म रहा था तो सदा वो अमर रहे. इसलिए आज के सोसाइटी में समाज में तुलसी का महत्व तो क्या है, आयुर्वेद के हिसाब से पीपल के महत्व तो के बारे में आज चर्चा किया है शिव पुराण के. अब इस समय में हमको साराम समय प्रस्तुत करने का समय आ गया. तो कल हमारे लिए बहुत अच्छा ऐसे ही प्रसंग आ जाएगा. आप लोग जरूर से आना सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक और शाम को चार बजे से लेकर छः बजे तक ये शिव पुराण महात्म्य हो जाता है. ये महात्म्य तीर्थ स्थान में बैठकर श्रवण करने का इसका महत्व तो अलग रहता है. आप कहीं भी हो तो इसके लिए आप क्या है कि याचना करके आ जाइए. शरीर मन तो पवित्र हो जाता है, जन्म जन्म के पाप भी दूर हो जाता है. तो इसीलिए तो शिव भगवान का दृष्टि

उनके पवित्र सोर शब्द से हम इस्तेमाल करते रहे, जुड़ते रहे। जय बलिए सत्य सनातन धर्म की जय।

ऋणापुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यां दशांसारां हस्तैस्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने सांसे।

ब्रह्मानंदम परम सुकलम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तस्मस्यादिलक्ष्यम एकम अनित्यम विमलचलम सर्वधि साक्षिभूतम्

देव नारायण भगवान की, देवेश्वर महादेव, अलकपुरी जी महादेव की, सतगुरु स्वामी माधवन जी भगवान की, सत्य सनातन धर्म। ओम शांति शांति शांति।